क्या आप उन लोगों में से हैं जो सुबह बेदार होते ही कॉफी मशीन का रुख करते हैं? तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। अगर ये इस्तेमाल बकसरत हो, एक दिन में कितने कप बहुत ज्यादा तस्वर किए जाते हैं, और क्या कैरमल और क्रीम वाली इंस्टेंट कॉफी को वाकई कॉफी के तौर पर माना जाता है? वो लोग जो सुबह आंख खुलते ही कॉफी मशीन का रुख करते हैं, वो लोग जो अपने मसरूफ काम के निजाम औकात के दौरान अपने कप को मुसलसल भरते रहते हैं, वो जो तवनाई को बहाल करने के लिए कैफीन के बगैर नहीं रह सकते। कॉफी अब बहुत से लोगों के लिए एक आदत से बढ़कर है, ये तकरीबन एक रस्म है, लेकिन इस सवाल भी कसरत से पूछा जा रहा है कि कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म पर कैसे असरअंदाज होता है। आज हम एक माहिर के साथ सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जमील ताश जी ओलो सिटी अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म डिजीज क्लिनिक के माहिर डॉक्टर सेजिन तुआन चाकर ने कॉफी के इस्तेमाल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में टीआरटी खबर चैनल को आगाही कराई है। आइए पहले कुछ वाजह करते चलें। कॉफी बजाते खुद एक नुकसानदेह मशरूब नहीं है, डॉक्टर चाकर ये कहते हुए शुरू करते हैं। हकीकत में जब सही मिकदार में और सही

तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस सेहत के लिए अहम फायदे फराहम कर सकती है। तयन करने वाले अवामिल, मिकदार, तरीका इस्तेमाल, फर्द की मजमुई सेहत है तो काफी क्यों हमें बेदारी का एहसास दिलाती है। कॉफी का बुनियादी असर इसकी कैफीन के अज्जा से ताल्लुक रखता है। कैफीन दिमाग में एडियोसिन रिसेप्टर्स आरजी तौर पर दबाव डालती है जिससे थकावट का एहसास होता है। यही वजह है कि आप ज्यादा बेदार, खशाश बशाश, तवज्जो मरकूज महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम नुक्ता भी है जिस पर डॉक्टर चाकर का इंतबाह बहुत वाज है। कैफीन हकीकी थकावट को दूर नहीं करती, पास कुछ मुद्दत के लिए उसे मुलतवी कर देती है। अगर आपको दिन भर कॉफी की बढ़ती हुई जरूरत महसूस होती है तो इसके पीछे अक्सर दीगर वजूहत होती हैं, जैसे नाकाफी नींद, दायमी तनाव या खुराक लेने की बेकायदगी। कॉफी की मुस्तकिल जरूरत बाज़ औक़ात जिस्म की तरफ से एक अहम इशारा भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं साइंस कॉफी के बारे में क्या कहती है। हाल ही मुतालियात में कुछ इंतहाई हैरान कुन नतज सामने आए हैं। 2025 में शाया होने वाले एक जामे जायजे के मुताबिक रोजाना 3 से 5 कप कॉफी का इस्तेमाल दिल की बीमारियों, टाइप 2 डायबिटीज, फॉलिश, इल्मी कमी और कैंसर के कुछ अकसाम के कम खतरे से मुंसलिक है। इससे भी ज्यादा ताज्जुब अंगेज एक और दरियाफ्त भी है। वो अफराज वकायदगी से लेकिन इतदाल के साथ कॉफी नोश करते हैं कि उम्र तवील हो सकती है। डॉक्टर चाकर ने निजाम हाजमा के नुक्ता नजर से एक दिलचस्प तस्वीर कशी भी की है। कॉफी में पाए जाने वाले क्लोरोजेनिक एसिड्स और सैकड़ों बायो एक्टिव मरकबात सोजिश को कम कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव पर मुस्बत असरात मरतब कर सकते हैं, इंसुलिन की हसासियत में मुआविन बन सकते हैं। जब दिमागी सेहत की बात आती है तो भी ये तस्वीर उम्मीद अफजा है। ऐसे मुतालियात हैं जो ये बताते हैं कि रोजाना 2-3 कप कैफीन वाली कॉफी डेमेंशिया यानी जहनी सलाहियत सुस्त, इल्मी कमी के खतरे में गिरावट ला सकती है। ये ख्याल किया जाता है कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनोल रूकी सेहत, ऑक्सीडेटिव तनाव और सोजिश पर मुस्बत असरात मुरतब करके दिमागी अफाल को सहारा देते हैं। दोस्तों

कहा कि आज मैंने ऐलान किया है कि मैंने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी जारी रखने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, कुछ लोग ये मान सकते हैं कि जिस किस्म की नुमाइंदगी मैं करना चाहती थी इस उम्मीदवारी के लिए यह मुनासिब वक्त नहीं था। मुझे इस बड़े चैलेंज को कबूल करने पर कोई अफसोस नहीं है। मैजलेट ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वामे मुत्तहिदा के इस आला तरीन अहदे के लिए इंतखाबी दौड़ में शामिल होकर उन्होंने इस बहस को हवा देने में मदद की है कि अगला सेक्रेटरी जनरल लातीनी अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को होना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा के अगले सरबराह के इंतखाब के गैर रस्मी अमल के हिस्से के तौर पर अब तक होने वाले 3 सर्वे में 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने दोबारा कोस्टा रिका की साबिक़ नायब सदर रेबिका ग्रीन स्पिन को बर्तरी दी है, जबकि तीसरे पोल में गयाना की साबिक वजीर खारजा कैरोलिन रोड्रिगस ब्रिकेट पहले नंबर पर रहीं। बैचलेट को इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता फरवरी में चिली के उस वक्त के सदर गैब्रियल बोरेक की इंतजामिया ने नामजद किया था और मैक्सिको और ब्राज़ील के बाएँ बाजू के रहनुमाओं ने उनकी हिमायत की थी, लेकिन 74 साल बाएँ बाजू की झुकाव रखने वाली बैचलेट की उम्मीदवारी उस वक्त अपनी रफ्तार खो बैठी जब चिली के नए रहनुमा इंतहाई दाएँ बाजू के सदर होज़े एंटोनियो कास ने अपनी हिमायत वापस ली थी। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

सामिन, आज हम कुदस जा रहे हैं, आसमां की तरफ बुलंद होते हुए उस सुनहरे गुंबद की तरफ। क्या आपका ख्याल है कि फ़न तामीर सिर्फ पत्थरों का नाम है? मेरे ख्याल में फ़न तामीर सिर्फ पत्थरों के दरमियान नहीं, बल्कि इस इमारत की ज्योमेट्री, रोशनी और आवाज़ में छुपा हुआ है। आइए मिलकर उसे दरियाफ्त करते हैं। जब आप पुराने शहर की तंग गलियों से अपना सर उठाकर देखते हैं तो आपको मस्जिद अक्सा के वसी सहन में अपनी पूरी शान और शौकत के साथ चमकता हुआ वो अक्स नज़र आता है। दिन की रोशनी को ताज की तरह पहने हुए एक सुनहरा गुंबद यानी कुब्बतुस्सहरा। अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की हिदायत पर 7वीं सदी के आखिर में कुब्बतुस्सहरा की तामीर शुरू हुई, जो 691 से 692 ईस्वी में मुकम्मल हुई। उसकी तामीर के अमल में दो नाम नुमाया तौर पर सामने आते हैं जो उस दौर के अहम ताबईन उलमा में से थे, यानी साहबा कराम को देखने वाली पहली नस्ल के माहिरीन, रजा बिन हेवा और यजीद बिन सला। अमवियों ने इस इमारत को तामीर करते हुए मुख्तलिफ तहजीबों के फनकाराना वर्से से फ़ायदा उठाया और एक नया इस्लामी जमालियाती तसव्वुर पेश किया। बाज़ंतीनी और सासानी फ़न के असरात का हामिल यह बेमिसाल शाहकार इस्लामी दुनिया की कदीम तरीन बड़ी यादगारों में से एक बन गया। सदियों पर मुहित इस यादगार का राज तो शुरू से ही उसके डिजाइन के अंदर छुपा हुआ था। यह डिजाइन कोई इतफाकी इंतखाब नहीं था, बल्कि यह इस इमारत के मरकजी ढांचे और पूरी ज्योमेट्री का तायुन करने वाले बुनियादी अनासर में से एक है। एट साइडेड शक्ल इमारत को एक मजबूत तनासुब और तवाजुन का एहसास देती है। कुब्बतुस्सहरा के मरकज में मौजूद मुकद्दस चट्टान के गिर्द सतूनों के दो अहम मरकज दायरे बने हुए हैं। अंदरूनी दायरे में 4 बड़े सतून और 12 सतून चट्टान को घेरे हुए हैं, जबकि बाहर की 8 पहलू दीवारें इस पूरे निज़ाम को एक इकाई में तब्दील करती हैं। यहाँ ज्योमेट्री सिर्फ आँख को नजर आने वाली कोई सजावट नहीं है, यह एक ऐसा पोशीदा निज़ाम है जो इमारत की जगह को तरतीब देता और उसकी सालमियत को बरकरार रखता है। इस पूरे रियाजियाती निज़ाम के बिल्कुल मरकज में 13 से 18 मीटर कुतर की जमीन से तकरीबन 2 मीटर बुलंद एक कुदरती चट्टान मौजूद है। यह चट्टान इंसानी तारीख के गहरे तरीन मजहबी अकायद की यादें अपने अंदर समोए हुए है। इस्लामी रवायत में यह माना जाता है कि नबी करीम शब मेराज को यहीं से आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए थे। यहूदी रवायत में इस चट्टान को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से से जोड़ा जाता है, जबकि ईसाई रवायत में इसका ताल्लुक कदीम यरूशलम की हैकल और मुकद्दस मकामात से जोड़कर तशरीहात की जाती हैं। एक तवील अरसे तक इस चट्टान के बारे में ज़बान ज़द आम अफसाने भी बने, जिनमें यह दावा किया गया कि यह चट्टान हवा में लटकी हुई है। हालांकि इस चट्टान के नीचे खाली जगह मौजूद है जिसे बर अल अरवाह यानी रूहों का कुआं कहा जाता है। यह जगह सदियों से मुख्तलिफ मजहबी दास्तानों का मौजू रही है। जब फन तामीर के मरकज में तराशे हुए पत्थर के बजाय इतनी बड़ी और कुदरती चट्टान को रखा जाता है तो इमारत इस चट्टान को घेरने और गोया इसका तहफ़ करने लगती है।